0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: आ महोरो
1: महोरो चने को
0: नींद थी आगुत को आकुयुरी है
1: नमँगा कोई बुहुमुगा
0: ये गो निस्सवा तो आगी ये जरोगो
1: निपुरी के जरोगी जमने वाचु अरिबु जुम्बुरा
0: ये गो
1: अंदाज़ इस्तवा ऐसे किए आप देखो अंजवारी मुरी को मिने की सुरी गोले में अभी चारे अगर केंद्र को केंद्र के लिए गुआसा इमानुएल हमें चुनौका
0: ये गो
1: इंगेन इंटरमेंट वाबा निगा अंजनी ने आहानी ने चुनौका इंगा सनम ना फोन वा चुआरी इंगा जाई तंजानिया
0: अरी को टेलीफोन इरिकरा तुगोरा चाने
1: ndakumva
0: eh unyumva nanje uri kimena amatwi
1: eh akarindo
0: nakahe
1: roze muhando uwe macho ni fishe ni fishe
0: sawa turagushimi
1: sawa mugirijoro kinjoro